0: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की, स्वच्छ सुजल गांव की, और हम इन दोनों विषयों में कैसे एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से जब स्वच्छता और खुले में शौच का विषय उठाया था तो यह अपने आप में अभूतपूर्व था। उनके मार्गदर्शन में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई और हम सब ने मिलकर अपने देश के हर गांव को खुले में शौच से मुक्त यानी ODF बनाने का जिम्मा उठाया। आने वाले वर्षों में यह मिशन और स्वच्छता का विषय एक जन आंदोलन बना और हमें इसमें आप सभी का पूर्ण सहयोग मिला। इस दौरान देश में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ और महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2019 में हमने खुद को ODF घोषित किया। इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि और इसकी नींव थी लोगों में आया व्यावहारिक परिवर्तन या बिहेवियरल चेंज। घरों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों, युवाओं, बच्चों, सभी में स्वच्छता के लिए जागरूकता बढ़ी और सभी ने इसको अपनी जीवन शैली का एक अंग बनाया। लेकिन हम केवल ODF पर नहीं रुके। 2020 से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण यानी फेज 2 पर काम शुरू हुआ। इसमें लक्ष्य था ODF से आगे ODF प्लस की ओर बढ़ना, अपने गांवों को ODF प्लस मॉडल गांव बनाना। ODF प्लस मॉडल गांव का अर्थ है कि गांव न केवल खुले में शौच से मुक्त हो बल्कि वहां का कचरा, गंदा पानी और प्लास्टिक अपशिष्ट या प्लास्टिक वेस्ट का भी सही तरीके से निपटान किया जा रहा हो। मतलब इसके तहत सरकार ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन यानी सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर भी जोर दे रही है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस दूसरे चरण में 31 मार्च 2026 तक हमारे 5 लाख से भी ज्यादा गांव ODF प्लस मॉडल घोषित किए जा चुके हैं और यह काम आप सभी के राज्यों में अभी भी जोर शोर से जारी है। ऐसे ही स्वच्छ सुजल गांव एक ऐसा गांव होता है जहां साफ पेयजल की व्यवस्था हो और हर परिवार के पास बेहतर स्वच्छता की भी सुविधा हो, यानी वह एक ODF प्लस मॉडल गांव भी घोषित किया जा चुका हो। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण केवल एक सरकारी योजना नहीं, यह एक जन आंदोलन है जिसमें सरकार के साथ साथ आप सभी की जन भागीदारी बहुत आवश्यक है। इस अभियान के अंतर्गत बन रही सुविधाओं, शौचालयों, कचरा प्रबंधन के केंद्र, प्लास्टिक वेस्ट यूनिट इत्यादि के रख रखाव और इनको सुचारू रूप से चलाने में राज्यों, जिलों, गांवों की हम सबकी अहम भूमिका है। इस भूमिका को भी आप सभी को पूरे मन से निभाना है। और हाँ, आपसे अनुरोध है कि अपने गांव, ब्लॉक, जिले के बच्चों को, युवाओं को भी स्वच्छता के विषय के प्रति जागरूक बनाएं, उनको इस अभियान के अंतर्गत बनी व्यवस्थाएं दिखाएं, जिससे भविष्य में वे भी आगे बढ़कर स्वच्छता का दीप प्रज्वलित रखें। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें, हम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना से हर काम करेंगे। हम स्वच्छ भारत विकसित भारत के लक्ष्य में अपना भरपूर सहयोग करेंगे। ना हम कचरा फैलाएंगे, ना दूसरों को फैलाने देंगे। हम अपने गांव को ODF प्लस मॉडल गांव बनाएंगे और जो गांव ODF प्लस मॉडल बन चुके हैं उनकी व्यवस्थाओं को सुचारू रखने में सहयोग देंगे। इसी संदेश के साथ मैं ऐश्वर्या सिंह आपसे विदा लेती हूँ। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के इस जन आंदोलन से। धन्यवाद। जय हिंद।
1: ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ತಜ್ಞರಾದ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗದ ಶ್ರೀಮತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ.
2: ಸುಜಲ್, ನಿನಗೊಂದು ಕುತೂಹಲಕರ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಲಾ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 100 ಸಮುದಾಯ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ನಾನು ಸುಚಿಕಾ, ನೀನು ಸುಜಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ದೂಷಿಕಾ 3 ಜನ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ.
1: ಹೌದಾ, ಹೇಗೆ?
2: ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕದ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
1: ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲಿ?
2: ನಡಿ, ನಿನಗೆ ರಾಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ನಾಟಕ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಹೆಸರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಯ, ದೂಷಿಕಾಗೆ ಪರಾಜಯ.
1: ದೂಷಿಕಾನ ಇಲ್ಲ ಪ್ರದೂಷಿಕಾನ?
2: ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ಸುಜಲ್. ಪ್ರದೋಷಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹವಾಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆದ್ರೆ ದೂಷಿಕ ಅವ್ಯಯ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅವಳನ್ನ ದೂಷಿಕ ಎಂದೇ ಕರೆಯೋಣ.
1: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟತನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಳ್ಳೆತನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಕೊಳಕು ಬಹಿರಂಗ ಸವಾಲನ್ನೇ ಹಾಕಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದೂಷಿಕಾಳು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹರಡಿದರೆ ಸ್ವಚ್ಛಿಕಾಳು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸುಜಲಕುಮಾರ ಸ್ವಚ್ಛ ಬೆಳಕಿನ ದೂತನಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಹಿರಿಯರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳು ಹೇಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬನ್ನಿ ನಾವೀಗ ಆಲಿಸೋಣ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಯ, ದೂಷಿಕಾಗೆ ಪರಾಜಯ.